0: प्यारी पुरिया लोकी कर दे कंध दे अज दीदारे, प्यारी पुरिया लोकी कर दे कंध दे अज दीदारे।
1: सदर

देख तेग पंथ की राज करेगा चूलते निशान रहे चूलते निशान रहे लागते दीवान रहे लागते दीवान रहे ग्रंथ सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: पूरी कंप्लीट नहीं हुआ, उन्होंने चेक किया कि कितने बार है,
1: ठीक है।
0: हां
1: ठीक, सही
0: तो

मानक मन चंचल चतुराई किनै ना पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एहो कुटंब तू जे देखदा चलै नाही तेरै नाले, साथ तेरै चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाइयै। ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछोताइयै, सत गुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरै नाले। कहै नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले, अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, अंतो ना पाया किनै तेरा, अपना आप तू जान हे। जी जंत सब खेल तेरा, क्या को आख वखाणै, आख है ता वेख है सब तू है जिन जगत उपाया। कहै नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत ना पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया। जी जंत सब तुद उपाय, एक वेख परसन आया, लब लोभ अहंकार चूका, सत गुरु भला पाया। कहै नानक जिसनु आप तुठा, तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता, केरी बिखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज त्रिसना, बहुत नाही बोलना, खन्या हो तिखी वाल हुनिकी, एत मार्ग जाना गुर प्रसादी, जिनी आप तजया हर वासना समानी। कहै नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली, ज्यो तू चलाए हे तिव चलहै स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाए हे तिवै चलहै, जिन्ना मार्ग पाव हे, कर कृपा जिन नाम लाए हे, से हर हर सदा त्याव हे। जिसनो कथा सुनाए हे अपनी, से गुरद्वारै सुख पाव हे। कहै नानक सच्चे साहिब ज्यो भावै तिवै चलाव हे। एहो सोहेला सबद सुहावा, सबदो सुहावा सदा सोहेला, सत गुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसया, जिन तुर हो लिखिया आया। एक फिर है कनेरे कर है गल्लां, गल्ली किनै ना पाया। कहै नानक सबद सोहेला सत गुरु सुनाया, पवित होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटंब सहत स्यो, पवित संगत सबाइया, कह दे पवित सुन दे पवित, से पवित जिनी मन वसाया। कहै नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया, करमी सहज ना उपजै विन सहजै सहसा ना जाए, नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए, सहसा जियो मलीन है कित संजम धोता जाए। मन तो वहो सबद लागहो, हर स्यो रहो चित लाए। कहै नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, एह सहसा एव जाए। जी आहो मैले बहरहु निर्मल, बहरहु निर्मल जी आहो ता मैले, तिनी जन्म जुआ हारिया, एह तिसना वड्डा रोग लगा, मरण मनहु विसारिया। वेदा मह नाम उत्तम, सो सुनहै नाही फिर है ज्यो बेतालिया। कहै नानक जिन सच तजिया, कूड़े लागे तिनी जन्म जुआ हारिया। जी आहो निर्मल बाहर हो निर्मल, बाहर आहो ता निर्मल जी आहो निर्मल, सतगुर ते करनी कमानी, कूड़ की सोए पहुचै नाही मनसा सच समानी। जन्म रतन जिने खटिया भले सेवन जारे, कहै नानक जिन मन निर्मल सदा रह है गुर नाले। जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै,
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜੀਆ ਹੋ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸਮਾਲੇ, ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਣੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਨਹੋ ਸੰਤਹੁ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇ ਮੁਖ ਹੋਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ, ਪੁੱਛੋ ਬਿਬੇਕੀਆ ਜਾਏ। ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ, ਆਵਹੁ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵਹੁ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੈ, ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਪੀਵਹੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰ ਰੰਗ, ਜਪਿਹੋ ਸਾਰਿਗ ਪਾਣੀ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵਹੁ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜਹੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਕਹਿਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰ ਹੈ ਰਸਨਾ, ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਚਿਤ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰ ਲਇਆ ਮਾਇਆ, ਬੋਲਣ ਪਏ ਰਵਾਣੀ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜਹੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਇਹੋ ਹੋਆ ਸਮਾਓ।

सत्संग जी अंतर्गत होके अपने नाम नु सुनना जियो नाम चक्कर ते सुन सकते हो हिरदा चक्कर जिथे दिल दी धड़कन इत्थे सुन सकते हो कंठ चक्कर जिथे गले चो आवाज आती है इत्थे सुन सकते हो किसी भी प्राणी ने जोर दे के मस्तक ते ध्यान लेके जान की कोशिश नहीं करनी जियो उत्ते ध्यान नहीं टिकाउणा जोर दे के जिन्हां गुरमुखां नूं शब्द सुणदे आ उन्हां ने शब्दां विच ध्यान रखना जियो जिन्हां गुरमुखां नूं नाम नहीं सुणदा उन्हां ने सास ग्रास सिमरन विच अंतरगत ध्यान रखना जियो श्वास अंदर नूं जांदा वाहे फील करना श्वास बाहर नूं आउंदा गुरु फील करना इस तरह आपां अंतरगत सास

संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छड़ बहे कारबार।

सुख हमरा, तेसे पासा राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक ताकी औसत करदा। गुरु गरीब निवाज, दसा पातशाहियां दी जगदी जोत, समर्थ गुरु आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, आद गुरु ग्रंथ साहिब जी दी छत्र छाया हेठ हजूरी अंदर सुभाईमान प्रेमी गुरसिख माई भाई समूह संगत सतगुरां दे पावन दरबार दियां हाजरियां भरदे हो, रोजाना भरदे हो। तुहाडा नितनेम ऐसा नितनेम रोजाना गुरु बख्शिश द्वारे प्राप्त होवे। साध संग दर्शन को है नित नेम जाको, सोई दर्शनी सम दर्श ध्यानी है। फिर अर्ज करदा, साध संग दर्शन को है नित नेम जाको, सोई दर्शनी सम दर्श ध्यानी है। शब्द विवेक एक टेक जाके मन बसे, मान गुर ज्ञान सोई ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी दी वचन चल रहे ने, शब्द नू मनन वाले शब्द तो ज्ञान प्राप्त करन वाले ओ ब्रह्म दा ज्ञान हासिल कर लेंदे ने। दृष्ट दरसार शब्द सुरत लिव, प्रेमी प्रे प्रेम उन मन उन मानी है। साध संग एक रंग जोई, सोई गुरमुख निर्मल निर्बानी है। साध संगत भई जिनू प्रेम लग जांदा, अंदरों बाहरों निर्मल हो जांदा, गुरु दी कृपा वरतदी है। आद गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साढ़े दसां पातशाहियां दी जगदी जोत है, जिहदा कोई आकार नहीं है निरंकार दा, जिनू कहिंदे रूप ना रेख ना रंग, केश त्रिहो गुण ते प्रभ भिन्न। उसे सतगुरु जी दे आकार स्वरूप साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। भाई गुरुदास साहिब जी होरां ने बड़े सोहणे बचन लिखे ने, धन धन सतगुर पुरख निरंकार, जिहदा कोई आकार ना होवे उहनू कहिंदे ने हांजी निरंकार। उस निरंकार ने आकार बनाया, उस निरंकार ने आद बाणी जुगो जुग अटले उहदा आकार है। निरंकार आकार बनाया, धन धन सतगुर सिख, धन धन सतगुर सिख सुन चरण शरण गुर सिख जो आया। मेरे सतगुरु धन ने धन ने ते जड़े गुरु दी वड्याई सुन के, साहबां दे दीदार साहबां दी अमृत बाणी सरवण करन वास्ते साध संगत विच आ बैठदे ने, उह वी धनता दे योग बन जांदे ने। धन धन सतगुर चरण, धन मस्तक गुर चरणी लाया, सतगुर दर्शन धन है ते तुहाडे वास्ते बोल दो वार धन आ गया। किन्ना गुरु प्यार करदा है, सतगुर दर्शन धन है। ता अधे बचन विच कहिंदे ने धन धन गुर सिख, हांजी धन धन गुर सिख परसन आया। सतगुरु धन ने ते जद तुसीं कदम कदम चल के आए हो ना, किसे दे घर जाओ ते तुहानू बुलावे ना, छत्ती प्रकार दे भोजन रखे तुहाडे ना, बचन सांझा ना करे ते तुहाडे अगे रखे होए छत्ती प्रकार दे भोजन ने तुहानू सारे ही फिक्के लगदे ने, सारे ही बेकार लगदे ने। पर जिस वेले किसे प्यार दी परिभाषा विच तुहाडे नाल जीओ कहिंदा ते तुहाडे अंदरों एक अनोखा जिहा सुकून मिलदा है। जदों असीं कदम कदम चल के साहबां दे दर ते आउंदे आ ते मेरे साहब कहिंदे आओ जी तू आओ हमारा, तुहानू जी आया नू वड्डियां भागां वाले गुरसिख ने। माई भाई मेरिया भैणां मावां वीर बजुर्ग जड़े रोजाना दे नेमी अते प्रेमी ने, सतगुर दर्शन धन है, धन धन गुरसिख परसन आया। ते पंजवें बोल विच आए होए गुरसिख वास्ते एक बहुत अनोखा जिहा बचन करदे ने, सिखा तू आया ता जरूर है पर शरदा तो खाली ना आवी, प्रेम तो बिना सखना ना आवी, अपने अंदर प्रेम लेके आवी, भावना लेके आवी ते तू धनता दे योग बन जावेगा, तेरे अंदर ब्राह्मण दा ज्ञान पैदा हो जावेगा, ब्रह्म दा ज्ञान ब्रह्म दा।
ਅਗਲਾ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਓ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਓ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਿਰਾਗ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਓ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਗੁਰੂ ਮੋਹਿ ਲਾਇਆ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਫਲਾਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਚਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਭਾਓ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਗੁਰੂ ਮੋਹਿ ਲਾਇਆ, ਦੁਰਮਤ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਮਿਟਾਇਆ। ਤੇ ਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸ਼ਰਾਮ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਅੱਠਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਣੀ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਣ ਆਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਪੰਨ ਸਾਹਿਬ

अजय सुनाओ समुंदर में क्या जानो क्या होए। मेरा टाइम बहुत जल्दी हो जाता है, आओ शब्द वाले समाप्ति वाले चलिए। मेरे साहब जी कहते वो अंदर अहंकार नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा, भी मन सारिया तो ब्रह्म ज्ञान वाले का नीवा होंदा है और सारिया का श्रोमणी बन जाता, परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी से जन भए नानक जिन प्रभ आप करे। अंत विच गरीब बनवास जी कृपा करदे ने, जन जन सेवक, पहला तो सेवक बनना पैना ते सेवक तो बाद उहदा रूप हो जाना है। पातशाह जी कहिंदे गुर कै गृह सेवक जो रहा, गुर की आग्या मन में सह, आपस को कर कछ न जनावा, हर हर नाम हृदय सद ध्यावे, सेवक की परिभाषा है। ते जदो सेवक बन के नाम जपदा है तो महाराज कहिंदे कि सतगुरां दी रहमत वरत जांदी है। नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, जदो कृपा होगी फिर ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। आओ ब्रह्म का ज्ञान लैण वास्ते लायो हाजरी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, गज के बोलियो।

कह नानक नंद हुआ सतगुरु मैं पाया। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। सबना गला

सुकह टल गुर सेविए अहनिस सहज सुख दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख जाए।

गुरपुरे मेरी राख ली, अमृत नाम हृदय में दीनो, जन्म जन्म की मैल गई। जुड़ बैठी गुरु रूप, गुरु प्यारी सत्संगत, सतगुरु कृपा करन, सबना दी हाजरियां दर प्रवान करन, दरों करों गुरसिखी जीवन की दात, गुरु चरणा नाल प्रेम अते प्रतीत बख्शिश करन, इतनी कि हाजरी दर प्रवान हुई फुलां दी खिमा बुलाऊ फते आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीरत तत बीचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारे जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बाहुर कछ ना बीचारे नाम रतन सुन जप जप जीमा हर नानक कंठ मझारे जो जन पार ब्रह्म अपने कीने

स्वामी सर्ब रहया पर पूरे अंतर बाहर हर प्रभ एको मिल हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाभ चलाए अनहद शब्द बजाए जन नानक दूजी लाभ चलाए अनहद

प्रभु मन चौपया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया वडभागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना वडभागी पाया हर कथिए अकथ कहानी हिरदय हर हर हर धुन उपजे हर जपिया मस्तक भाग जियो जन नानक बोलै तीजी लावै हर उपजै मन बै राग जियो।

वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत के चरणों च बेनती करते हैं भाई, आपां गुरु दरबार की मर्यादा नूं पहलां ते मुख रखिए। गुरु के सिखियां जो अपना फर्ज बनता है कि शहनशाह के दरबार में बैठे हाँ, पहली तो गल आपां नूं शांति दे नाल बैठना खड़ोना चाहिए, तो दूसरी गल जे गल्लां बातें करनियां तो प्लीज़ बाहर जाके कर लो। तो संगत जिहड़ी रूटीन दे नाल रोज़ आने वाली है वह बाहर मत्था टेकण तो खड़ी है, मेहरबानी इस गल नूं प्रवान करना जी। सो तुसीं हुण प्यार दे नाल बाहर जा सकते हो, आनंद कार्ज हो गया। तो संगत जिहड़ी नित गुरु महाराज जी के दर्शनों वास्ते आउंदी आ वह बाहर खड़ी है, उन्होंने अंदर आ लैन दिता जाए। तो तुसीं मेरी भैनों अपनियां गल्लां बातें जिहड़ियां वह बाहर जाके कर लियो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।

उठावे धनिया मृत करा अंग नड़े बारे सुरता मुई मार माहिय महल रुनी दरबारे रुवो कंत में लियो सचे के गुण सारे जल मल जानी न वालड़िया कपड़ा अप जानी जल था जल मल जानी न वालिया कपड़ पट अंबारे वाजे वजे सच्ची बाणी पंचा मुए मन मारे जानी वे सुनड़े मेरा मरण पया त्रिग जीवन संसारे जीवत मरै सो जानिए पेर सजड़ै हेत प्यारे तुसी रोव रोमण आईयो झूठा मुठी संसारे हो मुठड़े धंदै तहवणिया पेर छोड़ी अड़े बिंदण कारे घर घर कंत मेली अरूड़ै हेत प्यारे मैं फिर सच सलाहना हो रहसड़ी नाम पतारे गुर मिलिया वेस पलटिया सातन सच सिगारो आवो मिलो सहेलियो सिमरो सिरजन हारो भैयर नाम सुहागणी सासवार नहारो गावो गीत न बिरहड़ा नानक ब्रह्म विचारो वडहंस महला पहला जिन जग सिरज समाया सो साहेब कुदरता जनोवा सचड़ा दूर न पहलिया खड़कट सबद पछणुआ स सबद पछाणो दूर न जानो जिन एह रचना राचे नाम ते आए ता सुख पाए बिन नाम है पेड़ काचे जिन थापी पित जान सोई क्या कहो कहै बखाणो जिन जग थाप बताया जल हो सो साहिब परवाणो बाबा आया है उठ चलना अद पंत ससरुआ सिर सिर सचड़ लिखिया दुख सुख पुरब विचरुआ।

जिह सिमरत संकट मिटे दर्श तुहार होए। मुंदावणी महला पंजवा। थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधार।

राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप है आठो नंदन प्रथम राग भैरव वै करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम भैरवी बिलावली पुन्याकी गा वह बंगली पुनस लिखी की पही बारी ए भैरव की पाचाओ नारी पंचम हरख दिसाख सुनाव है बंगालम मद माधव गाव है ललत बिलावल गाव ही अपनी अपनी पहांत अष्ट पुत्र भैरव के गावह गायन पात्र द्वितीया माल

कौशक संग लाई, मारू मस्त अंग में वारा, प्रबल चंड कौशक उभारा, खौ खट औ पहुरा नद गाय, अष्ट माल कौशक संग लाई, पुन आयो हिंडोल, पंच नार संग अष्ट सुत, उठे तान कलोल, गायन तार मिलावही, तेलंगी देव करियाई, बसंती संदूर सुहाई, सरस अहिरी ले पार जा, संगलाई पंचो आर जा, सुरमानंद पास कर आए, चंद्र बिंब मंगलन सुहाए, सरसवान अवाहि विनोदा, गावह सरस बसंत कमोदा, अष्ट पुत्र

गुरु जी की फतेह। राम कली सद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद जगदाता सोए, भगत वशल तिहु लोए।

इतनी हाजरी प्रवान करनी है। सतगुरु जी कृपा करन, भाई साहब भाई सतनाम सिंह जी श्री आनंदपुर साहब वाले, उन्होंने अपने चरणों में सदीव सदीव काल वास्ते निवास बख्शन। सुभाव आनंद साहब के पाठ न जुड़ना करिए, कोई भी रसना वांझी न रहे।

सुपने जो संसार सुका होटल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ।

ज्ञान धन दारा संपत सगल जिन अपनी कर मान इन मैं कछ संगी नहीं नानक साची जान। पतित उदाहरण पै हरन हर अनाथ के नाथ कहो नानक तेह जानी है सदा बस्त तुम साथ। तन

तन तन संपै सुख दियो अर जेह नीके धाम कहो नानक सुनरे मना सिमरत काहे नाराम। सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए कहो नानक सुनरे मना तेह सिमरत गात होए जेह

जैसे जल ते बुदबुदा उपजे बिनसे नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुनमीत।

राग एक संग पंच बरंगन संगा लाप है आठो नंदन प्रथम राग पहरौ वै करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम पहरवी बिलावली पुनिया की गावह बंगली पुन असलिखी की पही बारी ए पहरौ की पाचौ नारी।

गौरा अवकानरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग वै गाव है पंचो संग बरंगन लाव है।

0: सहजत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवतार।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
2: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी नूं कीर्तन सरवण करवा रहे सन भाई साहब भाई गुरजीत सिंह जी बैंका हजूरी कीर्तनी है श्री दरबार साहब अमृतसर। भाई साहब होरां दा बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु रहमत करन इसे तरह आप संगत की सेवा विच तत्पर रहन। सो हुण आप जी दे सन्मुख स्टेज उपर सुशोभित हो चुके ने भाई साहब भाई गुरसेवक सिंह जी हजूरी कीर्तनी है श्री दरबार साहब। आओ उन्हां पासों इसे तरह 5 बजे तक कीर्तन सरवण करिए जी। कल नूं सिख संघर्ष के महान शहीद भाई गुरदीप सिंह दीपा दौलतपुरा डॉक्टर प्रीतम सिंह सेखों और डॉ भाई गुरदीप सिंह दीपा हेरा उन्होंने शहीदी दिन नूं मुख रखदिआं उन्हां दी याद विच रखे सहज पाठां दे भोग 9:25 ते मेन हाल विच आरंभ होणगे। सो आप जी ने शहीदां दी याद विच इस विशेष समागम विच शिरकत करन दी कृपालता करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।

0: सदा रक्षा पूर्ण होए चित की अच्छा
1: हमारा अपना जान करो प्रतपारा
0: मरे दुष्ट सभा तुम काब हो आप हाथ दे मुहे बचाव हो
1: तारा
0: मोर अच्छा निज कर द करिया सब रन को आज संगरिया
1: पूर्ण होए हमारी आसा तो भजन की रह प्यासा
0: छाड़ कोई अवर न त्याऊ जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ
1: सेवक सिख हमारे तारिया हमारे मारिया
0: आप हाथ दे मुझे अबरिया मरण काल का त्रास निवरिया
1: जो सदा हमारे बच्चा शिव सुजू करियो रक्षा
0: राख लिहो मोहे राखन हारे साहेब संत सहारे।

श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक ले त्याय। फ्रियंगत गुर ते अमरदास रामदास होय सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सुमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याय जिस डिठे सब जुख जाय। तेग बहादुर सिंह लिया कर नौन दिया वह ताय। सब थाई होय सहाय। दसवें पातशाह तन सतगुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होय सहाय। दसा पातशाह दी आत्मिक जोत तन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पाठ दीदार दा ध्यान तरके खासा जी बोलो जी। पंजा प्यारिया चौह साहबजादिया चालिया मुक्तियां हठिया जपियां तपिया जिना नाम जपिया। वंड के छकिया देख चलाई ते गवाई देख के अंडठ कीता। तिना प्यारिया सचारिया दी कमाई दा ध्यान तरके खासा जी बोलो जी। जिना सिंघा सिंघनिया ने धर्म हेत शीस दिते। बंद बंद कटाए खोपरिया लुहाइया चढ़खड़िया ते चढ़े। आर्या नाल चराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया। धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुआसा नाल निभाही। तिना पुरातन अते वर्तमान समय दे सरबत शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलो जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारा दा ध्यान तरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। चित आवै चित आउन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रशिया रियायत। देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी की बोल बाले बोलो जी। हे अकाल पुरख सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान। श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान। चौंकिया चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पता रखा आप वाहेगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो। समो गुरुद्वारा गुरधामा दे खुले दर्शन दी दात सेवा संभाल दा दान खालसा जी नु बख्शियो। हे नमान्या ते मान नेता ने तान ने टंडियो छत्र पिता गरीब नवाज। धन सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी। धन सतगुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। आप जी दे हजूर विच रह रहा साहिब जी दा पाठ दी अरदास है जी। अखर वादा घाटा पुलचक माफ करने सरबते का चराश करने। सही प्यारिया दे मेल जिना मिलया तेरा नाम चते आवे।

मिल साजन हो तुझ कुरबानो रहाओ एका सेज विछी तन कंता तन सूती पिर सद जागंता पियो मधुरो तन बतवंता तन जागै जे पिर बोलंता पई निराशी बहुत दिन लागे देश दिसंतर मैं सगले भागे जागे खिन रहन न पावो बिन पग पागे होए कृपाल प्रभ मिलहो सुभागे पयो कृपाल सतसंग मिलाया बूझी तपत कर है पिर पाया सगले सिगार हुन मुझ है सहाया कहो नानक।

0: जह देखा तह पिर है पाई, खोलियो कपाट ता मन ठहराई, रहाओ दूजा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: वाहेगुरु, वाहेगुरु।